की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा। सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर था

0: सारी सारी रात जागू रेडियो पे गाने सुनू, छत पे लेट के गिन चुका हूँ जो रोज वो सितारे गिनू, क्यों न जाने दोस्तों की दोस्ती में दिल ना लगे, सबसे
1: वास्ता यू स्पीक इंग्लिश
0: तोड़ ताड़ के
1: गेट आउट,
0: चाहता हूँ तेरा बनू अपने फैसले।